ये गोडास वाला फिटर में खुश भी लेफ्ट हम बैठते हैं मगर ये जल उठाए वन नंबर वन वन उठाए ना सो दैट इज फिटर एक्सप्रेस विद होम टाउन नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्ट गोडू एंड रिंग आउट इफ लिसनिंग सो हिज स्लिम डेस्ट विल रिंग फ्रॉम द टॉप एंड